0: पेंटागन कलेज तीनकुने काठमाडौँ।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ।
4: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: sip on ya.
1: Extreme energy drink.
2: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
3: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि। पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
2: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
3: 24 घन्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियू, पिआइसियू, आइसियू, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसुति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
2: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
3: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज। सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
2: सम्पर्क नम्बर 081-535-717।
4: आज यहाँ कहाँ भटका थियो?
5: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
4: परेशान हो कोई बात नहीं है। प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआं तमामन मेयर केर आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मल्लिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेयर केर आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
5: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
4: संपर्क नंबर है 98487916।
6: ए रुक रुक रुक,
7: के भयो, किन कराएको यस्तो?
6: दाई यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे।
8: के
2: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
3: नेपालगञ्जको बिपी चोकमा अवस्थित जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण जीभीएन अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
2: यदि तपाईँ आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
3: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीभीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-535-570।
9: यो कृष्ण सार एफएम
10: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: बड़ू हा कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ ले जिना हो
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाई न वहाँ ता अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई वोतराकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने ढूसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खाइना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध थे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिला
0: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता
1: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9842697 9585823697 वो 9804867 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
2: छोटो समय में धेरै संस्थामा डाक्टर इंजीनियर तथा सीए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो पेन्टागन कलेज तीन कुने काठमाडौँ

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागि
4: हाम्रो सहयोग।

0: यसक मोटरसाइकल स्वयं सेवक उपलब्धबाट सजिला से हो झट्टह पाजिला से ब्रह्मान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुइना मेर का सुझाक लगक एंटी भेनम भैलक उपचार केन्द्र में लै जाए पर्था
1: अपना हुआ जैने करी ना मैं द्वार लगा के राजे
0: वहाँ न कटलक सपक फोटो खिचला बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुला से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई जी
3: सफा डज डारन कलसे उपचार कला मोटरसाइकल चालक वा मोटरसाइकल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे हन अपना वो मोटरसाइकल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटी भेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जा डारी सफा कटलसे मोटरसाइकल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सक्दिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: एंड सेल नेपाल के लागी।
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएक लाख किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बैंकी के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेशा है मर्यादित बनाई उद्यमशीलता विकास कई के रोजगार सृजना करी ओ कराई।
1: कृषि व्यवसाय में तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट करी खेती व्यवसाय के नियमित हर हिसाब राख के विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
2: बजार हेर के खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के लागू करी।
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरंतरता दी आगे बढ़ाई वो बढ़ाई लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी वो कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कई के समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
2: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संगे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके।

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: के तपाईले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि

0: दुखेको दाँतको जराको उपचार खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने रगत आउने पिप बग्ने मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार पहेँलो खैरो दाँत सानो र ठुलो दाँत छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ
0: फोन नम्बर 081-532-375
2: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त
3: ओहो बाजे अब उता आएन ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि
4: हाम्रा सेवाहरू इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड स्ट्यान्डर्ड वार्ड
5: हजुर कौशल्या मेमोरियल अस्पताल कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 9 हलदारपुर बाँके सम्पर्क नम्बर 081-414-007 र 98-482-63-399
6: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
7: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जीवनको लागि
8: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस् शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ हो तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ याद राख्नुहोस् सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा मुटु चाहिन्छ मुटु
9: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
10: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
9: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
10: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
9: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
10: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
9: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके
11: ओहो आज डाइह नै मजा लागत हो मजासे दवाई करेना कहटु
9: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
11: ए बाट ठिक कैलो साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत
12: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाए
11: ए ओसिनो कला से उहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
12: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: Toilet Pony, yeah. Extreme energy drink.
1: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
2: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवानिवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ENT विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ENT कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको 7 दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 98580304 र 98480213।
3: ओहो, आज डाइह नै मजा लागत हो। मजा से दवाई करेला कहटु।
4: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइ न। पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
3: ए बात तो ठीक कहलो, साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत?
4: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो, सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो, भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाए।
3: ए ओसिनो कला से वहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
4: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। सम्पर्क नम्बर 081535717। कान्ति आरोग्य अस्पताल, अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।
3: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ लैजिदा हो?
4: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन, वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुइत। ओतरकेल कहाँ हो? वहाँ तो लम्बा समय से कान पक्ति रहना, जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान खजोइना, कान कम सुन्ना, कान दम्मा हुइना बिरामी के उपचार और परामर्श वो लम्बा समय से कान पक्ति रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुईट। वाकर संगे कान कम सुन्ना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाएत। जस्ते BTE, CIC, RIC जैसिन मेसिन फे वहाँ मिलत।
3: ए ओसिड हो कला से बुडु हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ता।
4: एकदम समय मा उपचार करेले से उपचार संभव बा। बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके। संचालक पूरन चौधरी। सम्पर्क नम्बर 98 84 20 697, 98 85 23 697 ओ 98 014 83 697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम मा सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी।
5: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर, इन्जिनियर तथा सिए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान, व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज, तिनकुने, काठमाडौँ।
6: एउटा राम्रो विद्यालयले केवल पढाइ मात्रै होइन, बच्चाको भविष्य पनि बनाउँछ।
7: नेपालगञ्जको बीपी चोकमा अवस्थित GVN सेकेन्डरी स्कुल गुणस्तरीय शिक्षा, अनुशासित वातावरण र अनुभवी शिक्षकहरूको उत्कृष्ट संयोजन हो। यहाँ विद्यार्थीलाई पुस्तकको ज्ञानसँगै संस्कार, आत्मविश्वास र जिम्मेवार नागरिक बन्ने शिक्षा दिइन्छ। आधुनिक शिक्षण विधि र सुरक्षित वातावरणका कारण GVN अभिभावकहरूको पहिलो रोजाई बन्न सफल भएको छ।
6: यदि तपाई आफ्ना नानीहरूको उज्जवल भविष्यका लागि विश्वासिलो र उत्कृष्ट विद्यालय खोजिरहनु भएको छ भने आजै सम्पर्क गर्नुहोस् जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल बिपी चोक नेपालगञ्ज।
7: शिक्षा र सफलताको पर्याय जीवीएन सेकेन्डरी स्कुल। सम्पर्क फोन नम्बर 081-531-570। के तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई प्र्याक्टिकल एजुकेसनसँग जोड्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुलमा अब कक्षा 11 होटल म्यानेजमेन्ट अध्ययनका लागि भर्ना खुलिसकेको छ। यहाँ विद्यार्थीहरूले केवल किताबबाट मात्र होइन व्यावहारिक अभ्यास मार्फत पनि सिक्ने अवसर पाउँछन्। मोडर्न किचन प्र्याक्टिकल, हस्पिटालिटी ट्रेनिङ, स्किल्ड टिचर्स एन्ड डिसिप्लिन्ड लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट अब एकै ठाउँमा।
6: आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। आजको समयमा सर्टिफिकेट मात्र होइन स्किल पनि आवश्यक छ। त्यसैले अरुणोदयले विद्यार्थीलाई विश्व स्तरको प्र्याक्टिकल एजुकेसन प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
7: यदि तपाईँ हस्पिटालिटी सेक्टरमा सफल करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै भर्ना सुनिश्चित गर्नुहोस्। सिट सीमित छन्। अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल, खजुराचार, बाके। सम्पर्क नम्बर 081-560-143 र 98-580-20-819।

0: यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
0: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98480-2697 98580-2697 और 98014-83697
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: toilet bunny, yeah. Extreme energy drink.
1: आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नर्सरीदेखि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुल्यो।
2: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक मार्फत विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासमा जोड दिँदै आइरहेको होप इन्टरनेसनल एकाडेमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना खुल्यो। नेपालगञ्जमा विगत 23 वर्षदेखि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको यस विद्यालयमा सुविधा सम्पन्न कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय तथा आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाला, प्रोजेक्टर मार्फत अध्यापन हुने कक्षा कोठा र सेमिनार हलका साथै विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै छात्र छात्राका लागि सुरक्षित छात्रवास, जेनेरेटर तथा चिसो तातो पानीको व्यवस्था समेत छ। फुटसल, क्रिकेट, भलिबल, बास्केटबल र ब्याडमिन्टन जस्ता खेल मैदानको व्यवस्था हुनुका साथै जेहन्दार तथा योग्य विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
1: यहाँ यातायातको पनि व्यवस्था रहेको छ।
2: होप इन्टरनेसनल एकेडेमी, गुणस्तरीय शिक्षाको भरपर्दो आधार।
1: थप जानकारीका लागि सम्पर्क 081551462 98584462 र 98582046।
3: अम्मा के दवाई करावे के है, लेकिन समझ में नहीं आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
4: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
3: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
4: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर पर विधि से शल्य क्रिया, जलेक घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेरे उपचार भी उपलब्ध है।
3: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में। यहाँ
4: कांति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081 535 717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: आज यार कहाँ भटकत हो?
0: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
2: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेर के आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेर के आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट।

0: के व्यवस्था है।
1: तब तो हम हूँ जाइबे और दूसरे के बताइबे।
0: संपर्क नंबर है 98487916।
2: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है कहाँ जाए तो ठीक रही तनी बताए दियो हमका
4: सुना जाए आपका हम बताई थे आप नेपालगंज में हैं अपने घर के खातिर ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते हैं तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए वहाँ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड सोफा डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल ड्रेसिंग टेबल दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है उके साथन टिकाऊ सामान आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है
3: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है
4: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037
5: आँखा मिचेको मिचे गरेको
6: हेर्न अचानक मेरो आँखाले अक्षर फोटो भिडियो सबै मधुरो देख्न थाल्यो भने
5: धेरै समय मोबाइल चलाइसी क्या
6: हो भने यो मोबाइल धेरै हेरेपछि साह्रै आँखा दुख्छ
5: ओहो यो त

0: back to back. Back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
3: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते है। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के में दिखाए तो जुड़ती स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
2: समय में उपचार यानी दवाई की है से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ हैं शारीरिक अपांगता होए से भी बच सका जाता है।
3: जानकारी रहक चाहिए कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बांके द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: नानीलाई कुन स्कुल भर्ना गर्ने होला? म त साह्रै चिन्तामा पो छु।
1: ह्यात तेरिका, किन चिन्ता लिनु भएको? हाम्रै नेपालगञ्ज बाह्र बेलासपुरमा न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल छ नि।
0: ए हो र, त्यहाँ कस्तो सुविधा छ र? उही किताब मात्रै घोकाउन त होला?
1: त्यस्तो होइन नि, त्यहाँ त डिजिटल क्लासरुम छ नि, जहाँ बालबालिकाहरूले आधुनिक प्रविधिबाट रमाइलो मान्दै सिक्छन्।
0: अनि सुरक्षाको कुरा नि, अहिलेको समयमा त डर पनि लाग्छ हौ।
1: त्यसको लागि चिन्ता लिनु पर्दैन, पुरै स्कुल परिसरभरि सिसिटिभी क्यामेराको निगरानी छ नि।
0: अनि शुल्क?
1: सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा नै यस विद्यालयको मुख्य विशेषता हो नि।
2: हाम्रा विशेषताहरू:
1: प्रविधि मैत्री शिक्षा,
0: गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ,
1: खेलकुदमा विशेष जोड,
0: शान्त र बालमैत्री वातावरण,
1: सिसिटिभी जडान भएको सुरक्षित विद्यालय परिसर
0: र स्कुल भ्यानको सुविधा समेत छ।
1: न्यू भिजन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, नेपालगञ्ज बाह्र बेलासपुर। सम्पर्क नम्बर 081537505।
3: अम्मा के दवाई करावे के, लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
4: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो? पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
3: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
4: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
3: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जायत हैं, कांति आरोग्य अस्पताल में यहाँ।
4: कांति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2397 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: back to back, back to back.
1: In this song on
0: Stay Tuned.
2: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डारे, ना ही ठीक आते।
3: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर, जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रिय और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ हैं, कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ हैं प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ हैं ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
3: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5315000।
5: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
7: नेपालगंज 9 अवस्थित क वर्गको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था हो जीवीएन माध्यमिक विद्यालय। उत्कृष्ट नतिजा सहित यहाँको बालमैत्री वातावरण, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाई र शान्त परिवेशमा बाल बालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा विशेष जोड़ दिएको छ। जीवीएन माध्यमिक विद्यालयका विशेषताहरू: बालमैत्री वातावरण, विद्यार्थी केन्द्रित सिकाई, अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक, आधुनिक शिक्षण विधि, अनुशासित, सुरक्षित र शान्त वातावरण, अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड, पीजीदेखि कक्षा 9 अध्ययनको सुविधा। आफ्ना बाल बालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि आजै रोज्नुहोस्। भर्ना खुल्ला भइसकेको छ जीवीएन माध्यमिक विद्यालय, नेपालगंज 9, बाँके।
8: सम्पर्क फोन नम्बर 98-84-28-820।

0: टाइम चेक अहिले ठीक 3 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: यो कृष्ण सार एफएम
3: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अपनाएक ला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में व्यावसायिक पद्धति अपनाई हो आय मूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेशा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट करी खेती व्यवसाय के नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई।
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कैके लागू करी।
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरंतरता दी आगे बढ़ाई हो बढ़ाई लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्य लाग प्रयास करी वो कराई।
2: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा।
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके।
3: बच्चाको भविष्य पढाइले मात्र होइन, सही वातावरण, सही मार्गदर्शन र सही निर्णयले बनाउँछ। 600 बढी अभिभावकको रोजाई हो बाँकेको खजुरा चारमा अवस्थित अरुणोदय बोर्डिङ हाई स्कुल। 2053 सालदेखि निरन्तर गुणस्तरीय शिक्षामा समर्पित नर्सरीदेखि कक्षा 12 सञ्चालन भइरहेको यस विद्यालयमा प्रविधि मैत्री शिक्षा, संस्कार र नैतिकतामा आधारित सिकाई, खेलकुद र अनुशासनमा विशेष जोड, कम्प्युटर, संगीत, खेलकुद, मार्शल आर्ट, चित्रकला, योगा र उद्घोषण तालिम लगायतका तालिमहरू विद्यार्थीहरूको रुचि अनुसार सञ्चालन गरिन्छ। साथै बालमैत्री वातावरण र हरियाली बगैँचा भएको, सुरक्षित परिसर, सीसीटीभी जडान भएको, फराकिलो खेल मैदान र पार्किङको सुविधा भएको, छात्राका लागि छुट्टै शौचालय, शुद्ध खाने पानीको व्यवस्था र स्कुल बसको पनि सुविधा छ। तपाईँको छोराछोरीको उज्यालो भविष्यका लागि सही छनौट आजै गर्नुहोस्। भर्ना खुला छ, सीमित सिट भएकाले आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
4: सम्पर्क फोन नम्बर 98582019।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बिरामी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: छोटो समयमा धेरै संस्थामा डाक्टर, इन्जिनियर तथा सीए बनाउन सफल पेन्टागन कलेजमा कक्षा 11 को लागि विज्ञान, व्यवस्थापन तथा कानून संकायमा भर्ना खुल्यो। पेन्टागन कलेज, तिनकुने, काठमाडौँ।
3: यो कृष्ण सार एफएम
4: 94 मेगाहर्ज, कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता सूर्य ज्योति सही प्लान
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 98025 32568।
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्र म व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके

0: आज यहाँ कहाँ भटकत हो?
1: आम और फल के बिरवा खरीदे खातिर परेशान हैं।
0: परेशान हो कोई बात नहीं है, प्रभात नर्सरी फार्म जोन भवनियापुर 14 महिया है, जिके प्रोपराइटर हैं प्रभात कुमार चौधरी और उनके फार्म के संपर्क स्थान है जिला हुलाक कार्यालय के पछाड़ी त्रिशक्ति मारवाड़ी मंदिर के सामने चौधरी सरकार बक्स पोली क्लिनिक है। हुआ तमामन मेयर केर आम केर बिरवा दशहरी चौसा बम्बैया अमरपाली नीलम मलिका गुलाब खास और फल महिया लीची अमरूद कटहर केला अनार अंगूर नाशपति जस सब मेयर केर आम और फल के बिरवा के संगे लकड़ी के खातिर सागवन जस बिरवा उचित दाम में यहाँ मिलत है। सैगर खरीदे पर यहाँ विशेष छूट के व्यवस्था है।
1: तब तो हम हो जाइबे और दूसरे को बताइबे।
0: संपर्क नंबर है 98487916।
2: ए रुको रुको रुको
3: के भयो किन कराएको यस्तो
2: दाई? यस्तो पनि हुन्छ र? 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे
4: के
5: के तपाईं पनि आफ्ना नानी बाबुहरूलाई कक्षा 11 मा के पढाउने र कहाँ पढाउने भनेर सोचिरहनु भएको छ?
6: यदि त्यसो हो भने नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुरमा रहेको युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमीलाई एकपटक अवश्य सम्झिनुहोस्। कक्षा 11 मा नयाँ भर्ना खुलिसकेको छ है।
5: हाम्रा विशेषताहरू मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षण सिकाइ,
6: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक भएको,
5: अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड,
6: सुरक्षित वातावरण र यातायातको सुविधा,
5: छात्रवृत्तिको व्यवस्था,
6: प्रोजेक्टर र स्मार्ट बोर्ड सहितका आधुनिक कक्षा कोठा र सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला,
5: खेलकुद र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू मार्फत विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिइने
6: र समय समयमा अभिभावकहरूसँग नियमित छलफल र अन्तर्क्रिया गरिने।
5: सिट सीमित छन्, आजै भर्ना गर्नुहोस्। युनाइटेड एजुकेशनल एकेडेमी नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँके। प्रधानाध्यापक जीवराज भण्डारी, सम्पर्क फोन नम्बर 98585041।
7: यो कृष्ण सार एफएम
8: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: toilet bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके के विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्र म व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
2: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सर सलाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बांके

0: California. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से

0: आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेशा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कै के रोजगारी सृजना करी हो कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
0: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
0: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करे लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बांके

0: बीर डेंटल
1: नेपालगंज शहर में संचालित अत्याधुनिक सुविधा संपन्न बीर डेंटल में दांत तथा मुख संबंधी संपूर्ण उपचार काठमांडू तथा भेरी अंचल अस्पताल का अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आर के लामी छाने द्वारा उपचार गरिन्छ।
2: डाक्टर लामी छाने द्वारा गरिने विशेष उपचारहरू दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत आउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्रा तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
1: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
2: फोन नम्बर 081-532-375।
3: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीड़ा थे, बहुत दवाई कराए डाले, ना ही ठीक आ थे।
4: सुनो बहनी, खुशी के खबर, कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जात है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
4: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
6: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
7: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागी।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी